0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। कोई शख्स अगर आपके इस घर में आ रहा है, आंगन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी कामयाबी के चर्चे चहुंओर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई चर्चा, कोई खास विषय जिस पर बहुत सारी बातें होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे साथ आज जुड़ रहा है। विषय ही कुछ ऐसा है, विषय है खोजी पत्रकारिता, यानी कि इसके विषय में जानने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कौन शख्स हैं, कौन शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। 1.5 दशक से ज्यादा समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं और आपका जो अनुभव है, जी न्यूज के साथ आप जुड़े रहे, न्यूज एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, न्यूज चैनल है, डीडी न्यूज है और तमाम सारे चैनल्स के साथ बहुत बड़ा अनुभव के साथ आप आते हैं, आप हैं। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो न्यूज 18 में आप इस समय कार्यरत हैं। आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: बहुत बहुत धन्यवाद, शारदा यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया स्टूडेंट के साथ 1-to-1 गेट टूगेदर करने के लिए। अच्छा लगेगा मुझे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए पत्रकारिता का।
4: बेशक सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जानने की समझने की कोशिश कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं और आपका जो एरिया आता है वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो सबसे पहले मैं सबसे स्टूडेंट्स के ब्याह पे यही जानना समझना चाहता हूं कि खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र आता है तो पुराने समय का हम जब जिक्र करें तो गुप्तचर हुआ करते थे, हनुमान जी का जिक्र आता है, तो वर्तमान समय में इस डेजिग्नेशन को कैसे हम परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को आप समझाना चाहेंगे?
6: देखिए, मैं 2005 से क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कवर कर रहा हूं, तो जब मैं 2005 में इस फील्ड में नया नया आया था तो एक चैनल के साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आपको काम करने का किसी भी स्टूडेंट को मौका मिलता है तो पहले तो उसके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की।
4: क्या बात है?
6: और उसके अंदर एक ऐसी डेयरिंग होना चाहिए कि वो किसी से भी फोन करने में, बात करने में, मिलने में हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के लिए अगर किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइमिंग या पर्सन ये सब डिपेंड नहीं करता है, आपको अपना काम डिपेंड करता है और उसके लिए आप किसी भी हद तक
4: जा सकते हैं, जाना चाहिए
6: और जाना भी
4: चाहिए।
6: अगर आपको एक अच्छा मेहनती जर्नलिस्ट बनना है और आज के सिनारियो में अगर आपको वो सर्वाइव करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी है, चाहे आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में हो या कोई
4: भी
6: फील्ड में, स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, आप किसी में हो, बिजनेस में हो, आपको उस फील्ड में आपको
4: जुनून चाहिए, पागल
6: करना पड़ेगा आपको। क्या बात है, जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर अपना पूरा समर्पण उसके लिए देंगे।
4: क्या बात है। तो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि बात जो निकल कर सामने आई है कि जुनून, पागलपन, जब आप प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र भी आपको प्यार करेगा, लोग भी आपको बेशुमार प्यार बरसाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर आनंद तिवारी जी। बहुत अच्छे बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और खोजी पत्रकारिता के यूं कहें कि महारथी हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और ये बातें कहीं ना कहीं हमें टच करती हैं। खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है गुप्तचरों का, जिक्र होता है हनुमान जी का, क्योंकि वो खोजी पत्रकारिता की ही वजह से पता लगा पाए थे कि सीता मैया कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर ने जिक्र किया कि एक जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, प्यार करेंगे जब आप अपने क्षेत्र से तो निश्चित तौर पर उसका जो रिवर्ट आता है तो वो काम आपको आगे लेकर जाता है। तो सर, मैं आपसे एक बार फिर से आपका सुरशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: जुनून पागलपन का आपने जिक्र किया, इस बात को मैं आगे लेकर यूं जाना चाहूंगा कि खोजी पत्रकारिता नो डाउट हिम्मत का काम है, उसमें कहीं ना कहीं एक डर घबराहट है। कोई जरा सा भी थ्रेट दे देता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान डर सकता है, घबरा सकता है या अपने करियर को वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा।

0: वो लड़की का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके वो स्टोरी ऑन एयर हुई और वो काफी चली, डिबेट शो टाइप में हुआ, मेरा लाइव हुआ। उसके बाद शाम को मेरे को फोन आना शुरू हो गए, बेसिकली पावर का मिस यूज जिसको कहते हैं, मतलब मेरे खिलाफ गाजियाबाद पुलिस से बहुत सारे फोन आए मेरे एडिटर को कि आपके रिपोर्टर को अरेस्ट करेंगे, फेक न्यूज चलाइए। तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास तो विक्टिम था, हमारे पास सारी चीजें थी। और जैसा आपने बताया ना, वो डर उस समय मेरे अंदर नहीं था क्योंकि मैं तो उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे हम वहाँ पे कैमरा लेके शूट करने चले गए, गार्ड्स के इंटरव्यू किए, अंदर नहीं घुसने दी, मतलब जो सारा टीवी का ड्रामा होता है वो हमने सारा करके दिखाया। उसमें
1: सबूत थे आपके पास?
0: सबूत थे, मतलब उसको टीवी की भाषा में आप ड्रामा हो सकते हैं, बेसिकली हमने एविडेंस कलेक्ट करे थे सारे। उसके बाद वो केस बेस हुए, बहुत सारे थ्रेट कॉल आने लगे, मैं थोड़ा डर भी गया क्योंकि मैं जर्नलिज्म में नया इंटर्नशिप करके। मेरे एडिटर ने बोला कि तुम्हारी अगर न्यूज सही है तो डरने की जरूरत नहीं
1: है। क्या बात है, क्या
0: उस समय बस मैंने एक दिमाग ये लगाया कि मेरा चैनल उस समय दिल्ली NCR का चैनल था, मुझे पता था कि ये न्यूज नेशनल कैसे बनेगी। तो मैंने एक मेरे सीनियर थे, वो दूसरे चैनल में थे, मतलब देश का नंबर वन चैनल था उसमें थे, मैंने उनसे वो स्टोरी डिस्कस की शाम को स्पेशली फिल्म सिटी आके
1: जी।
0: उनको वो बड़ी कैचिंग लगी, तो मैंने सारा रिसोर्सेज अपना उनको दे दिया,
1: ट्रांसफर कर दे दिया,
0: कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा।
1: अच्छा,
0: सारा कुछ, और सारी डॉक्यूमेंट जो थे फोटोकॉपी करके उनको दे दी
1: जी।
0: उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, आप यकीन, उसके नेक्स्ट डे जो प्राइम टाइम शो आता है 8 बजे का, उसमें वो स्टोरी खुली
1: दूसरे चैनल पे जी,
0: ऑन एयर हुई। और उसके बाद मतलब शायद ही कोई मीडिया होगा दिल्ली NCR का जिसने वो स्टोरी फॉलो नहीं की। उसके बाद वो लड़का जेल भी गया जो था ब्यूरोक्रेट्स का, और फिर वो फैमिली हमारे चैनल्स में आई, उन्होंने हमारा थैंक्स करा, उनकी बेटी ने थैंक्स करा, उनके फादर ने थैंक्स करा कि आपकी स्टोरी से हमें ये बेस मिला। वो एक्चुअली वो जो मैंने स्विच करी थी स्टोरी, वो मेरा अपना खुद का दिमाग था।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नया था जर्नलिज्म में, और फिर मुझे लग रहा था ये न्यूज अगर नेशनल नहीं बनी तो फिर बहुत सारे प्रेशर्स हम पे आएंगे और हम फिर मतलब एक मोरल डाउन होता है आपका, वो डाउन नहीं। और वो स्टोरी इतनी पिक हुई कि मतलब वो उसको
1: मैं समझ गया ना सर,
0: उसकी गूंज थी।
1: मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपकी स्टोरी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं काम कर रहे हैं क्या सीख मिलती है। निश्चित तौर पर आपकी बात से उनको जरूर सीख मिलेगी कि आपको डरना नहीं है, धमकी भरे फोन भी आ सकते हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जा सकता है, आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि उस दिन अगर आनंद तिवारी जी रुक गए होते तो यहां तक आनंद भरी यात्रा नहीं कर पाते। ये जो सफर रहा है वाकई बहुत सुहाना सफर रहा है, तभी आप कुछ अपने अनुभव को शेयर कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता पा रहे हैं। और मुझे यही कहना है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निर्भीक होकर, यानी कि डरेगा बिल्कुल मत, अच्छी तरीके से पत्रकारिता करिए। और निश्चित तौर पर ये समय, ये वक्त आपका है, कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान आनंद तिवारी जी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं मिस्टर आनंद तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया से, जो कि खोजी पत्रकारिता का क्षेत्र सर का है, उस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है। उनके अनुभवों को हम जान रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं इनसे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, ये जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी। तो सर एक बार फिर से सुरोशादा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है।
1: नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक तरीके से, दे रहे हैं ऐसा लग रहा है।
0: ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना, अदरवाइज आपके पास समय कहाँ।
1: शारदा यूनिवर्सिटी का थैंक्स जो उन्होंने हमें इतना ऑनर दे के यहाँ बुलाया।
0: थैंक यू सर। सर मेरी बातों बातों में बात निकल कर ये सामने आई कि क्या करें क्या ना करें। कुछ एथिक्स होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ स्किल्स जो स्टूडेंट्स डेवलप कर सकता है, तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जब इस फील्ड में आ रहे हैं, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े।
1: देखिए, बिल्कुल आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको मीडिया एथिक्स पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
0: जी,
1: फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है आजकल, आपको उससे बचना है। आपको किसी लाभ लालच में नहीं आना है, आपको बिल्कुल खबर की डेप्थ तक जाना है, तब आपको उसको ऑन एयर करना है। ये नहीं कि आपको कोई ने खबर दे दी उसका सर पैर नहीं पता, आपने उसको ऑन एयर कर दी, या किसी कोई कितने ही बड़ा रेनाउंड अफसर हो, कोई हो, जब तक आप उसकी डेप्थ नहीं पता करेंगे वो स्टोरी की, जब तक आपको उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए।
0: जी,
1: दूसरा बात होता है आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, भले चाहे वो क्राइम जर्नलिज्म हो या कोई और, आपको उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा जो करंट न्यूज आ रही है उनको ज्यादा फॉलो करेंगे या उनका फॉलो अप रखेंगे, तो आप एक बेहतर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और जो अभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, जिनका अभी लास्ट ईयर है या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो अभी यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे या कहीं जॉब करेंगे, उनको बेसिकली अभी से एक अपना गोल और एम तैयार करना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या बेसिकली।
0: जी,
1: और जब वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, मुझे क्राइम जर्नलिज्म ही करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें आपको पुराने बहुत सारे केसेस है जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मुझे, मैं तो कहता हूँ कि आपको आजकल इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है जो रियल स्टोरी पे बनी हुई है, आपको उनको देखना चाहिए। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है जो रियल स्टोरी पे बनी, लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनी, बायोग्राफीज बनी है, आप उनको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो बंदा क्या था, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कैसे क्राइम की दुनिया में आया। जैसे हम लोग अभी सडनली हमने बहुत सारी सीरीज करी न्यूज 18 ने, शायद न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल होगा देश का जो देश के करीबन 8-9 गैंगस्टरों के घर गया। मैं खुद होके आया हूँ। जब हम गए तो हमें पता चला कि वो जो गैंगस्टर थे उनका एक एक पार्ट क्या है लाइफ का, दूसरा पार्ट
0: क्या है,
1: क्राइम की दुनिया से अलग वो क्या है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप फोन पे जर्नलिज्म नहीं कर सकते, आपको फील्ड पे जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने फील्ड के बारे में, मुझे लगता है जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे आगे आगे।
0: बेहतरीन सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी। मुझे लगता है कि इन बातों को अगर वो गांठ बांध लेंगे तो निश्चित तौर पर इस फील्ड में कहीं रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। कभी कभी शिकायत तो होती होगी जब आप देखते होंगे कुछ इंटर्न्स आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हथेली पे सरसों तुरंत उग जाए, आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी भी दिखती होगी कि कहीं वो ललक है, लगन है या नहीं है, तो वो जब आप मिलते हो स्टूडेंट से तो उस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब मैं इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं मानूंगा, मतलब आज का स्टूडेंट जो है मास कम्युनिकेशन का, उसको बहुत सारी चीजें जो है वो फास्ट चाहिए।
0: जी,
1: हम लोग जब इंटर्नशिप करते थे तो हमने 6-6 महीने इंटर्नशिप किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अब तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं।
0: जी,
1: पहले रिसोर्सेज उतने नहीं थे जिसमें आपको काम करना होता था। अब के इंटर्नस क्या होते हैं, उनको बहुत सडनली 1 महीने के इंटर्नशिप में अगले महीने उनको नौकरी चाहिए।
0: नौकरी।
1: और वो बहुत कम ही स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है जो बहुत दिल से सीखना चाहते हैं चीजों को। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, हमारे साथ उन्हें फील्ड में भी भेजा जाता है, तो उसमें 10 में से केवल 2 इंटर्न्स ऐसे होते हैं जो हमें जहां लगता है कि जो सीखना चाहते हैं, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं,
0: उन्हीं को नौकरी ऑफर करते हैं।
1: बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बस वे बोलते हैं कि सर हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, हमको घर जाना है, हमको मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप करा दीजिए, तो वो लगता है कि वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब मैं और भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो जिनको अपना बेसिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए जो नहीं होता है,
0: नहीं होता।
1: और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फील्ड के नॉलेज से ज्यादा होता है, मतलब वो सीखना चाहते हैं
0: बहुत कुछ।
1: तो मैं स्टूडेंट को मतलब उनका मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मतलब बेसिकली बोल रहा हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए हैं, आपको अगर जर्नलिज्म ही करना है या पीआर एजेंसी में जाना है या क्रिएटिविटी में जाना है
0: तो तैयार होकर आइए,
1: तैयार होकर आइए,
0: माइंड मेकअप करिए।
1: और अगर आपको कोई भी न्यूज चैनल या अखबार या छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म या आपको इंटर्नशिप का मौका दे रहा है तो आप वहाँ बहुत ज्यादा सीखिए। आपको सिखाएगा नहीं बड़े चैनल्स में,
0: बिल्कुल
1: आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे सीनियर से जाना पड़ेगा कि या आउटपुट है या इनपुट है, असाइनमेंट ऐसा होता है, ग्राफिक्स ऐसे बनते हैं, वॉइस ओवर ये रूम है। जब आप खुद सीखेंगे तो सामने वाला भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो तो बोलेगा 8 घंटे की शिफ्ट है आप करिए और घर चले जाइए।
0: सही बात है,
1: वो आपको सर्टिफिकेट थमा देंगे एक महीने।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहूंगा कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। वक्त अगर आपने अभी देखा तो निश्चित तौर पर आपका वक्त नहीं आएगा, लेकिन जब आप वक्त नहीं देखेंगे तो एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके काम की पूछ होगी। और इन बातों का यहाँ डिस्कशन करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं अपने गेस्ट से कि ताकि उन बातों को आप समझ पाएं जो आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और मेरे साथ आनंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं न्यूज 18 से। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ आज एक खास मेहमान है मिस्टर आनंद तिवारी जी, जो कि न्यूज 18 से ताल्लुक रखते हैं। बहुत पीछे बहुत बड़ा अनुभव है, अलग अलग चैनल में काम किया है और खोजी पत्रकारिता में आपकी महारत हासिल है। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की, इसलिए बातें की ताकि एक खूबसूरत जवाब की मैं उम्मीद रख रहा था, उससे भी बेहतरीन जवाब हमें मिले। सो मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो उन बातों को जब आप अपनाएंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। सर, कभी कभी इस क्षेत्र में जब आप पत्रकारिता के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डर घबराहट जैसे उसके बारे में आपने बताया कि वो सारी चीजें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने दिक्कतें आई होंगी, आपको लगा कि मैं आज बच ही गया, थैंक गॉड, अदरवाइज तो आज मेरी जान चली जाती। इसके अलावा दूसरी बात भी मैं इसमें जानना चाहूंगा कि जब कोई विक्टिम होता है तो आजकल हम देखते हैं कि किसी को फेस दिखा देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि भाई फेस नहीं दिखाना चाहिए, ये एथिक्स में है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए।
1: देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो भी जुविनाइल होगा उसका फेस नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो विक्टिम हो या नहीं हो, इनोसेंट हो। दूसरा, जो रेप विक्टिम होते हैं या जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, आपको उनका फेस कभी नहीं दिखाना चाहिए, ना उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट की तो ये तक गाइडलाइन है कि आप उनके रेडियस के आस पड़ोस के घर के वीडियो फोटो भी नहीं दिखाएं, उनके फैमिली मेंबर्स के किसी के फोटो नहीं दिखाएं। तो बेसिकली रेप और या सेक्सुअल असॉल्ट की खबरों में ये बहुत बचना चाहिए। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकता है और आपके पर्सनल जो आपका प्रोफेशन है उस पर भी आपको
0: हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ।
1: तो बेसिकली इसमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई रेप विक्टिम्स हैं या आप सेक्सुअल असॉल्ट वाले विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू करने भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि उनका फेस ब्लर करें या उनका फेस ना दिखाएं। आप बैक साइड कैमरा लगा के और फिर उनका इंटरव्यू करें जिसमें उनका बैक केवल पीठ दिखे और उनकी वॉइस जाए
0: जी।
1: और कोशिश करें कि उस उनमें उनका नाम नहीं पूछें, उनके फैमिली के बारे में नहीं पूछें, कोई ऐसी चीज नहीं पूछें जिससे कि उनकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो। वो एक्चुअली कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी है और होना भी नहीं चाहिए, मतलब वो। तो बाकी दूसरा आपने बताया, जब आपको ऐसी जगह पे रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि लाइफ थ्रेट है या आपकी जो इक्विपमेंट है उनको चोट पहुंच सकती है,
0: जान का खतरा हो सकता है,
1: जान का, तो आपको वहां पर ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आपको बहुत भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो इन्फॉर्मेशन देना है अपने चैनल्स को, विजुअल दिखाना है। आप किसी ऐसी जगह जाके विजुअल दिखाई जहाँ पे आपको पुलिस प्रोटेक्शन हो या पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो। जैसे हम भी राइट्स कवर करने जाते हैं तो हम उसी एरिया तक रहते हैं जहाँ पे की पुलिस प्रेजेंस हो, पुलिस फोर्स, क्योंकि वो मीडिया को हार्म नहीं करेगी। कई मौके ऐसे आते हैं जब पुलिस वाले भी पत्रकारों को आपने देखा होगा कि उनको हार्म दौड़ाते हैं, लाठी बढ़ाते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा, वो आपका दिमाग आपको ओपन रखना पड़ेगा। अभी वक्त की नजाकत क्या, उस हिसाब से आपको जर्नलिज्म करना। ये नहीं कि आप जुनून में अंदर घूम गए, उस समय पत्रकारिता में वो
0: शहीद हो जाएंगे।
1: हाँ, आपको अपने इक्विपमेंट का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो जब राइट्स वाली स्थिति आए तो आप एक ऐसी जगह पे जाके लाइव करें जहां से कि आप व्यूअर्स को वो विजुअल भी दिखा सके और अपनी बात भी रख सकते हैं और खुद भी सेफ होकर अपना रिपोर्टिंग करें, चाहे वो आप बाढ़ की रिपोर्टिंग

0: कर रहा हूँ, या जो दिल्ली में या और भी जगह जो दंगे हुए उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई हो, या आप कोई ऐसी जगह चले गए हो जहाँ बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, पब्लिक भड़क सकती है,
1: ध्यान रखने
0: ये आपको रखना पड़ेगा। ये ऑफिस भी लगातार बताता है, आप न्यूज चैनल्स भी एथिक्स के बारे में बताते हैं, और ये रिपोर्टर को फील्ड में या कैमरामैन जो जो आपके स्टूडेंट जो कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं आगे, उनका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में है, स्टिल फोटोग्राफी में है, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। फोटोग्राफी में भी ये कि आप माइनर के फोटो ना लें, छोटे बच्चों के फोटो ना दिखाएं चैनल्स पे। अभी बहुत सारी न्यूज में ऐसा होता है जब छोटे बच्चों के फोटो दिखा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाता है, रेप विक्टिम के फोटो दिखाता है, वीडियो दिखाता
1: है। सर, आप इस बात को हम को रिलेट कर सकते हैं, अभी शिवाय की घटना घटी थी, उस बच्चे का पिक्चर नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सोच रहा हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अगर पिक्चर आएगी तो हो सकता है कि वो दिक्कतें उसके आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती हैं, क्योंकि शिवाय का ग्वालियर की घटना थी, बच्चे का अपहरण होता है और उसके बाद वो मीडिया के सामने होता है।
0: बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, किडनैपिंग की तो खबरें नहीं दिखाना चाहिए। किडनैपिंग की न्यूज तब आपको दिखाना चाहिए जब या तो बच्चा रिकवर हो जाए या एक्यूज जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे बच्चे की लाइफ पर थ्रेट हो सकता है। आप एक न्यूज चला देंगे वो पूरे देश में चली जाएगी, किडनैपर्स डर के हो सकता है बच्चे को मार दें, और बहुत सारे ऐसे केस में हुआ है जब किडनैपर्स तुरंत जब उनको लगता है कि मीडिया में न्यूज आ गई तो वो उस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें विक्टिम्स की मर्डर कर दिए गए हैं, बाद में उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ये पुलिस भी इसमें बहुत कोशिश करती है कि मीडिया को सारी चीजें लीक ना हो, और अगर आपकी भी एथिक्स है कि आपको ऐसी चीजें नहीं चलाना चाहिए जिससे कोई की लाइफ थ्रेट आपकी न्यूज से अगर हो रही है। तो
1: बहुत अच्छा सर। लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार का एक माहौल बना के चलेंगे, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, और जो ये बातें बताई गई हैं इन बातों को जरूर जानिएगा, समझिएगा। और वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो मैं होता हूँ 9:11। सर, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाई, इस बात के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके स्टूडेंट्स का भी, रेडियो स्टेशन का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर कॉल कर आप हमें बता सकते हैं कि ये चर्चा, ये वार्ता, ये इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल यूज़ शारदा 90.8 FM इंकलाबी जिद्दी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ऐरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
1: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
0: तो यार शहद दे दे।
1: हाँ तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
2: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारी से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे। खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडाशय कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है।

राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
1: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहां है, सारी मुश्किलें आसान है। और यकीन मानिए, हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं, और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें, क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई। इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: बाय।
1: बाबूजी जरा धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो एक है, सेहत सही तो लाभ गई। और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है, क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जरूर, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाएं। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन ग्रेटर नोएडा का, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हमारे साथ में है डॉक्टर अलका गुप्ता। आप ACMO हैं और साथ में आप DSO भी हैं, और आज हम बात करेंगे, जैसा कि सभी जानते हैं बरसात का मौसम है, और ऐसे मौसम में आपको पता ही है कि सांप, कांतर, बिच्छू ये निकल आते हैं। जब इनके बिलों में पानी भर जाता है तो घर की तरफ भी आ जाते हैं, और वैसे भी इनको छुपने के लिए स्थान चाहिए, और जब हम असावधानी पूर्वक कार्य करते तो कहीं ना कहीं हम इनके शिकार हो जाते हैं। अगर कोई भी शिकार हो जाता है तो क्या कुछ करना चाहिए, इन सब विषयों पर आज हम बारी बारी से जानकारी करेंगे। तो डॉक्टर अलका गुप्ता जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार, धन्यवाद आपका, और आपने ये बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और इसमें आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। तो जैसा बताया ही है कि इसमें जो है, जो सरीसृप वर्ग है उसके जो बिल है उनमें पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। इस वजह से मनुष्यों के संपर्क में इस मौसम में ज़्यादा आते हैं। तो सबसे तो इसमें जो गंभीर विषय है वो सांप काटने का हो जाता है। बाकी जो जो जानवर हैं वो अगर काट लेते हैं तो उनका उपचार हमारे आप नज़दीकी CHC PHC या कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मनुष्य घबरा जाता है कि अगर उसको सांप ने काट लिया है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उस जगह को स्थिर रखना है, उसमें पट्टी बांधना या कुछ ऐसे उस घाव पे ऐसा कुछ करना नहीं है, और आपको शीघ्र ही तुरंत आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, और वहाँ पर आपका प्राथमिक उपचार भी होगा और आपको एंटी स्नेक वेनम की डोज भी मिल जाएगी, जिससे कि आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं।
5: कई बार तो ऐसा होता है किसी को सोते में काट लिया और वो जो भी कीड़ा है या सांप है बिच्छू वो चला भी गया, पता भी नहीं चला कि कौन हमको काट गया, तो उसकी वो पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमको सांप ने काटा है?
6: देखिए, सुन्न पड़ जाएगा, नीला हो जाएगा वो जगह पर, लेकिन ये पहचान अगर नहीं हो पा रही है कि जहरीला है या नहीं है, फिर भी आप उसमें सावधानी वश आप एंटी स्नेक वेनम ले लीजिए, कि मान लीजिए अगर जहरीला है तो एंटी स्नेक वेनम की डोज उस पर काम करेगी ही, नहीं भी है तो भी एक प्रिकॉशनरी आप एंटी स्नेक वेनम ले लेंगे तो उसमें ये डर निकल जाएगा कि अगर जहरीला सांप है तो काट लिया तो विष फैल सकता है उसका, तो आप एंटी स्नेक वेनम आपको दोनों ही केस में लेना ही है।
5: तो जैसे आपने बताया, वो हम बात कर लेते हैं कि जब सांप ने या बिच्छू ने किसी को काट लिया है उस टाइम बहुत अफरात अफरी मच जाती है, हायतौबा हो जाती है, तो उस समय क्या कुछ करना बहुत आवश्यक है?
6: देखिए, उस समय तो सबसे पहले बहुत परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति डर की वजह से उसको इतना उसमें डर व्याप्त हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी मौत हो जाती है कि मुझे सांप ने काट लिया है, तो इसलिए धैर्य संयम बनाए रखना है और उस जगह को आपको हिलाना नहीं है, उसमें कोई जैसे चूसना या पट्टी बांधना या ऐसा कुछ भी नहीं करना है उस घाव वाली जगह पर। ये है, आप रनिंग वाटर से धो सकते हैं, बहते हुए पानी से, साबुन के पानी से घोल से आप धो लीजिए और तुरंत ही आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और एंटी स्नेक वेनम की डोज ले लीजिए। आपने अगर देख लिया है कि सांप ने नहीं काटा, किसी और जानवर ने काटा, तो जलन हो सकती है उसमें, तो उसमें प्राथमिक उपचार और कुछ एंटी स्टेरॉयड वगैरह दवा लेने से आराम हो जाएगा, वो आपको स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाएगी। और अगर सांप ने काटा है तो फिर आपको एंटी स्नेक वेनम लेना ज़रूरी हो जाता है। इसमें समय ना गंवाते हुए तुरंत ही आपको जाना रहता है, क्योंकि समय बहुत इसे महत्वपूर्ण रहता है।
5: बिल्कुल डॉक्टर अलका गुप्ता जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी समय ऐसे ना गवाएं। समय बहुत ही, मतलब इस सिचुएशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जल्दी से जल्दी अपने जो नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है तो वहाँ जा करके इसका जो टीका है वो अवश्य लगवा लें, ताकि आप इस जानलेवा बीमारी से बच जाएं।
6: एक विषय मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे इस समय पानी भर गया, कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आई हुई है, तो जो ये चछुंदर और ये जो चूहे काट लेते हैं, इनसे भी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए भी अगर आपको चछुंदर या चूहे ने काटा है तो उसके लिए भी आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आपको उपचार लेना है।
5: ये तो आपने बिल्कुल नई बात बताई है, अक्सर होता है कि आप सो रहे हैं और चूहा आपको काट के चला जाता है, तो ज़रूर आप नज़दीकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जाकर के उसका टीका अवश्य लगवा, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो। डॉक्टर अलका गुप्ता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, जागरूक होंगे, औरों को भी जागरूक करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज

0: सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और जैसा कि आप जानते हैं, बताते रहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है तो आपको लाभ ही लाभ होते हैं। आप अपने घर के काम अच्छी तरह से कर पाते हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो भी ढंग से कर पाते हैं और घर की आपको चिंता भी नहीं रहती है। तो बहुत से काम हमारे इस तरह से बनते हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और कई बार ऐसा होता है जो हमारे समुदाय के लोग हैं, कोई स्वास्थ्य परेशानी हो जाती है जिसमें कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज कहाँ पे कराएं, महंगा इलाज होता है आसपास, लेकिन अपने खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों की जानकारी करेंगे कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है खास करके कौन कौन सी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनका के लाभ जो भी स्वास्थ्य का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और सरकार की बहुत सारी योजना भी हैं स्वास्थ्य की, तो उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर मदन मोहन मणि त्रिपाठी जी, उनसे हम सब बातें जानेंगे। सर, अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नोएडा का, तो कौन कौन सी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं लोगों के लिए?
1: हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडिया, ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और जो भी जैसे डिलीवरी के लिए लोग बाहर कहते हैं 50,000 लग गया, 20,000 लग गया, डिलीवरी में सारी सुविधाएं यहाँ पर मुफ्त हैं, सारी दवाएं भी मुफ्त हैं, और आपको डिलीवरी के बाद 1400 रुपया भी दिया जाता है। आई डिपार्टमेंट है यहाँ पर, चश्मे भी बनते हैं और दूसरी चीज़ आँखों की जांच होती है। नीचे जिला अस्पताल में ये है कि वैक्सीनेशन भी होता है बच्चों का, बहुत से लोग आते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, हार्निया, हाइड्रोसील, गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ENT है जिसमें सर्जरी होती है, टिम्पैनोप्लास्टी होती है, मैरिंगोप्लास्टी होती है, नेजल बोन सर्जरी होती है। बाकी यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ NRC है, SNCU है, ये सारी सुविधाएं जिला अस्पताल में मौजूद हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, हड्डी का ऑपरेशन भी होता है टूटने पे, तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन जनता को जानकारी के अभाव में सब प्राइवेट अस्पताल में, चाहे कुछ दलालों के चक्कर में लोग पढ़ के बाहर की सुविधाएँ ले रहे हैं जो बहुत महंगी हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने बताया बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऑपरेशन की सुविधा भी हैं, दांतों की बात करें तो हम हाइड्रोसील हर्निया की बात करेंगे, तो अपने यहाँ पर कितने सर्जन हैं जो इसका काम देखते हैं?
1: अभी 2 सर्जन हैं हमारे यहाँ काम देख रहे हैं, सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जैसे हाइड्रोसील हो गया, हर्निया हो गया, वेरिकोसील लगा, तो कोई भी सर्जन कर सकता है तीनों का ऑपरेशन?
1: जनरल सर्जन कर सकते हैं, जनरल सर्जन। अब जैसे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ तो उसमें यूरोलॉजिस्ट का काम है, जैसे हेड इंजरी हुई तो उसमें न्यूरो सर्जन का काम है, ये सब सुपर स्पेशलिटी हैं।
0: तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, अक्सर जो हर्निया या हाइड्रोसील है लोग लोक लज्जा की वजह से भी इसके बारे में बात नहीं बता पाते और पता भी नहीं होता है उनको। और ज़रूर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील बड़ी आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएँ खासकर जो प्रसव जिनका होता है तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ?
1: गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए, उनके लिए सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट कर रही है। पहली चीज तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है कि जो भी गर्भवती माता हो उसको खून की कमी ना होने पाए, रक्ताल्पता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इनका 4 ANC होता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, ये 4 ANC होता है, और उसके बाद से उसमें इनका टीकाकरण भी होता है टिटनेस से, फिर उसके बाद से इनको आयरन, फोलिक एसिड दवाएँ दी जाती हैं। एक आशा उस क्षेत्र की इनके साथ हमेशा लगी रहती है, जब प्रसव का समय आता है उसके पहले भी अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है कि जैसे नाल उल है गले के अंदर तो नहीं फंस रही है, चाहे और कोई परेशानी है, उसके साथ हमेशा लगी रहती है। और जब डिलीवरी का समय आता है तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करके, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो सीजेरियन प्रसव से बच्चा पैदा होते हैं।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर जिनका प्रसव होता है। सुनो शारदा 90.8 FM से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
1: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
0: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
1: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
0: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर
1: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइ

ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, देश की रक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में खुले आसमान के तले सीमा पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगा देते हैं। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है और इसी कारण हर देश प्रेमी सैनिकों के जज्बे को सलाम करता है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। सैनिकों के हौसले से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और करोड़ों लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश प्रगति कर रहा है। हमारे सैनिक सीमा की सुरक्षा के साथ ही देश पर आने वाली आपदा में भी पूरा सहयोग करते हैं। आपदा विशेषकर बाढ़ आने पर हमारे सैनिक जहां भी लगाए जाते हैं वहां लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर संकट में पड़े हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए जुट जाते हैं। हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे से देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश के लिए अपनी जान भी देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। सैनिकों का काम केवल सीमा पर रक्षा करना ही नहीं होता, बल्कि वे आपात स्थितियों में भी नागरिकों की मदद करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों के दौरान लोगों को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सैनिक देश के रक्षक हैं और उनकी सेवाओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही देश के सैनिकों के सम्मान की, लेकिन किसान मित्रों यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि एक बार हमारे एक फौजी भाई और हमारे एक किसान भाई की मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत होती है। एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम ना बारिश देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। उधर हमारे फौजी भाई ने कहा कि देखिए किसान भाई, हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है। हम दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं, हम भी ना गर्मी देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और ना भूख की परवाह करते हैं, ना प्यास की परवाह करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं और पता नहीं कहां से गोली चल जाए उसका मुकाबला करने के लिए भी हम एकदम तैयार रहते हैं। इस तरह की नोकझोंक हमारे किसान भाई और फौजी भाई में हो जाती है। तो इसी मौके की रागनी किसान मित्रों आज आपको सुनवाते हैं। किस्सा रहेगा जय जवान जय किसान का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में।
2: सही बात है, बिल्कुल

किशन भाई सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो बॉर्डर पर

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, किस्सा था जय जवान जय किसान का। किसान मित्रों, देश के खाद्यान्न उत्पादकों की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आप किसान भाइयों की उत्पादकता में वृद्धि तथा वित्तीय अवस्था सुधारने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे किसान भाइयों को बीज और खेती जैसी उपकरण संबंधी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ये मिशन भारत के किसानों को अच्छी पैदावार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा होने के प्रयास में कार्यरत है। अब किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि इस मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, किसान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर और अच्छी आय के अवसर देना, भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार करना और आगे बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को पूरा करना, किसानों की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए पंप सेट, पानी के छिड़काव करने वाले यंत्र और पानी वाले पाइप वितरित करना। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। और आइए अब आपको एक रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं रविंदर खालौर और लोकेंद्र, किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे रविंदर खालोर और लोकेंद्र सिंह। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसके कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो वो हैं गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। अगर इनका संक्रमण दिखे तो तुरंत किसान भाइयों, आपको पशुओं

व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर, थन में पड़े फपोलों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब किसान मित्रों बात करते हैं कि बचाव कैसे किया जाए पशुओं का इन बीमारी से। तो बचाव के लिए 3 माह के ऊपर के सभी पशुओं का वर्ष में एक बार टीकाकरण जरूर करवाएं। ये रोग पशुओं को बरसात में अधिक होता है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। उपचार के लिए आप अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए और पशु का उपचार करवाएं। लेकिन साल में 2 बार खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं। तो किसान मित्रों ये तो आपने जाना कि दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब किसान भाइयों आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी, किस्सा था हरिश्चंद्र तारामती का। और अब किसान मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए, आपसे अनुमति ली जाए। तो इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: तो दोस्तों, अब तो नारा जी हताश हो जाते हैं और उधर सावित्री के पिताजी अश्वपति, उन्होंने सोचा इकलौती पुत्री है, हो सकता है इसके दिलो दिमाग में आ जाए और कहने लगे, बेटी मेरी एक बात सुन,

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं। सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: रोताऊ अवधपुरी के अंदर महाराज सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। मेहरबानों विष्णु भगवान का सिंहासन हाल गया, मेरे किसी भक्त पर भीड़ पड़ गई। विश्वामित्र ने सारा हाल सुना दिया, महाराज 99 यज्ञ पूरे कर चुके महाराज हरिश्चंद्र और 100 यज्ञ की तैयारी है, फिर क्या था। दोस्तों विश्वामित्र यज्ञ का खंडन करने के लिए आ पहुंचे और हरिश्चंद के दरवाजे पर आ गए। यह हो सत्यवादी महाराज की, आइए महानुभाव आइए। दानी सत्यवादी हम तुम्हारे दरवाजे पर कुछ इच्छाएं लेकर के आए हैं।
1: क्या इच्छा है महाराज बताइए, जिसकी लायक हूं पूरा कर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

साथियों, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने ये दान तो सपने में ही दे दिया था और सारा हाल मंत्री को बताया था। मेहरबानों, सवेरा होते ही विश्वामित्र क्यों ना दरबार में टपके। तो मेहरबानों, सारा राजकाज 3 वचनों में ले लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र 60 भार का कर्ज उतारने के लिए खजाने की ओर बढ़े, कह दिया हरिश्चंद्र बाहर चले आओ, तुम्हारा खजाने पर कोई अधिकार नहीं, तुम वचनहार हो चुके। मेरे मेहरबानों, वचनहार नहीं हो सकते थे हरिश्चंद्र, बाहर निकल गए। और आज हरिश्चंद्र तारावती पुत्र रोहतास तीनों प्राणी नमस्कार करते हुए जन्मभूमि को और माफी मांगते हुए अवधपुरी की जनता से भला कैसे चल रहे हैं, सुनिए।

चले छोड़ राज घर बार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
9: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती है, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: दरवाजा खोल। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो? अरे कहां मरी है? दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोल सकती हा? मुझे 10 मिनट हो गए हैं बाहर खड़े हुए। क्या कर रही थी तब से? पता नहीं क्या क्या करती रहती है अंदर बैठकर। हटो यहां से। अरे अब कुछ खाने को भी देगी कि मुंह ही ताकती रहेगी मेरा? तुझे तेरी माँ ने सिखाया नहीं है बाहर से आए इंसान को रोटी पानी देना होता है? पता नहीं कहां से मेरे नसीब में लिखी हुई है मनहूस जैसी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ भाई कैसे हो?
1: बस ठीक हूँ यार, तू बता।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक चल रहा है सब।
1: बढ़िया बढ़िया, तू सुना भाभी कैसी है?
0: अरे यार नाम किसका ले दिया तूने, उसका क्या होगा? ठीक है वो भी, बस मेरी जिंदगी उसने नरक बना के रखी हुई है, मनहूस जैसी औरत।
1: भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया?
0: ओ कुछ नहीं यार, जब से शादी हुई है ना मेरी जिंदगी तो नरक ही बन गई है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी टोटल ही बर्बाद हो गई है, मैंने तो जैसे आफत ही गले लगा ली हो। इतनी मनहूस है ना भाई, क्या बताऊं? जब से मेरी जिंदगी में आई है हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कभी चैन से नहीं रह पाया हूँ मैं जब से उससे शादी की है। और भाई इसका बाप कहता है कि हमारी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बड़ी ज्यादा संस्कारी है। अरे मुंह माय संस्कारी है, है क्या सुंदर का क्या करूं मैं, किसी काम के जोगे नहीं है भाई, कोई काम नहीं करी राजी। और सुनो मेरी बात भाई आप।
1: जी भाई। और
0: भाई बाप ने उसके मुझे गाड़ी तक तो दी नहीं, एक टूटी फूटी सी बाइक दे दी है, है? मैंने सोचा था कि गाड़ी होगी मेरी भी टोर होगी, है मैं भी टोर से आया जाया करूंगा, टूटी सी बाइक उसके बाप ने मेरे मथे मर दी है। ओ अरे क्या तोड़ दिया बिने, रुक मैं बाद में कॉल करता हूँ, पता नहीं इस मनहूस ने अब क्या तोड़ दिया मेरा। करता हूँ बिने, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है बाय बाय बाय। तेरे बाप ने दिया था ये? हाथ टूटे हैं तेरे जो ढंग से तुझसे उठाया नहीं जाता, जब देखो तब नुकसान करती रहती है। अरे यार बड़ी अजीबोगरीब औरत है तू। हाँ
2: मैं उठाती हूँ, अभी उठाती हूँ।
0: अरे जवान मत खोल मेरे सामने, समझी? ना अकल है तुझमें ना ही तू सुंदर है। और सुन अगर ज्यादा बोली ना तो तेरी सांस तक बंद कर दूंगा, दिमाग खराब करके रखती है सुबह शाम बस मेरा।

0: हेलो माँ,
1: माँ मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत पीटते हैं ये, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप प्लीज प्लीज पापा को कहकर मुझे यहाँ से ले जाओ ना, प्लीज प्लीज माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत पीटते हैं ये, मैं नहीं रह सकती माँ, प्लीज प्लीज आप पापा को बोलिए कि मुझे यहाँ से ले जाए, प्लीज।
2: चुगली कर रही थी मेरी, हाँ मेरी चुगली कर रही थी। रुक मैं बताता हूँ चुगली कैसे होती है, देख अब देख तू कौन बचाता है तुझे, आज कौन बचाता है तुझे। इधर आ तू, इधर आ, हैं इधर इधर बकवास करती है मेरे आगे, हैं इधर ही रखूंगा तुझे मैं और ऐसे ही पीटूंगा तुझे मैं, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, हैं कौन बचाता है तुझे, बकवास करती है मेरे आगे, हैं।
1: भगवान मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, ये इंसान मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। हे भगवान कैसा पति दिया है मुझे, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो।

0: माया, ओ माया, माया दरवाजा खोल, देख कोई आया है बाहर।
1: हाँ जी, मैं अभी देखती हूँ।
2: मैडम, आपका नाम माया है?
1: जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही माया हूँ।
2: आपने कंप्लेंट की थी?
1: जी, मैंने ही कंप्लेंट की है।
0: ओ, कौन है? बताती क्यों नहीं, कब से खड़ी है दरवाजे के पास? कौन है, कौन आया, बता जल्दी।
2: हाँ जी, तो यही है आपके पति?
1: जी इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, बताओ, मैं ही हूँ इसका पति, क्या हुआ बताओ।
2: तुम्हारे खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है, इन्होंने रेडियो गुंजन के थ्रू कंप्लेंट की है।
0: मेरे खिलाफ? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा तो बहुत प्यार है आपस में। बोलो माया, बोलो ना माया, हमारा तो इतना प्यार है इंस्पेक्टर साहब कि क्या बताएं आपको, हम तो एक दूसरे के बिना रोटी नहीं खाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ ही रहे
2: बस,
0: हो ना?
2: बस, मुझे लग ही रहा इनका चेहरा देखकर।
1: इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती।
0: अरे तू चुप कर। अरे
2: तू तेरे को बोला तू चुप कर। मुझे पहले ही लग गया था पता इनका चेहरा देखकर कि कितना प्यार करता है तू। माया, घबराओ मत, तुम बताओ मुझे सच सच, क्या माजरा है?
1: इंस्पेक्टर साहब, ये रोज रोज आते हैं और मुझे पीटते हैं, छोटी छोटी बात को लेके हाथ उठाते हैं। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, अगर मैं और इनके साथ रहूंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे पे भी इसका असर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ, मुझे बचा दीजिए, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए।
2: चलिए आप, चलिए चलिए, मेरे साथ चलिए आप पुलिस स्टेशन, मेरे साथ चलिए, चल चल चल चल।
0: सर, हमारा आपसी मसला है, आप रहने दीजिए ना।
2: ये क्या आपसी मसला है? नहीं, हमारा आपसी मसला नहीं है, चुपचाप चल पड़, घसीटता हुआ लेके जाऊंगा नहीं तो यहाँ से।
0: माया, बोलो ना इन्हें, कुछ तो बोलो माया।
2: सब बस माया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर हर महिला तुम्हारे जैसे हिम्मत से काम करने लगे तो ये घरेलू हिंसा खत्म हो जाएगी। सब बस माया, सब बस।

अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, जो कि संभव हो पाया है CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा। और ये खास कार्यक्रम है जहां उद्देश्य है पठन का, पाठन का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, समझने का। और वाकई एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है और शीर्षक है पाठशाला पर आधारित चर्चा ध्वनिशाला। चलिए समय ज्यादा ना गवाते हुए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनिशाला में।
3: प्यारे बच्चों, नमस्कार। मुझे मालूम है कि आप सभी कहानी और कविता सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे, बहुत समय से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो लीजिए, आज आपका इंतजार खत्म हुआ और आज हम एक सुनते हैं कविता। ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में शामिल है। क्या आप जानते हैं इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता में है एक ऊंट। जी हाँ, ऊंट। ये कविता ऊंट पर आधारित है। रेगिस्तान में यही ऊंट लोगों की सवारी बनने का काम करता है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक कविता जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो तैयार हैं सारे बच्चे? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो कैसी लगी आपको कविता? ये कविता ऊंट के चलने पर है, लेकिन ये ऊंट चल कहाँ रहा है, सोचिए। बिल्कुल सही, ये ऊंट चल रहा है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्या होता है? क्या रेगिस्तान से जुड़ा हुआ कोई शब्द हमारी कविता में आया है? आपने जरूर ध्यान से सुना होगा। शाबाश, ये शब्द है बालू। और कविता में ये बात कैसे कही गई थी? बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम बालू में चलते हैं तो हमारा तो पैर धस जाता है, या कोई भी चलेगा तो उसका पैर बालू में धस जाएगा या फंस जाएगा, लेकिन ऊंट कैसे चलता होगा? आपने कभी ऊंट के पैरों की बनावट देखी है? उसके पैर गद्देदार होते हैं, तो उसके पैरों में ऐसी खास बात होती है कि वे ऊंट में धंसते नहीं हैं, और फिर ऊंट तेज गति से रेगिस्तान में चल लेता है। तो इसलिए कविता में यही बात कही है कि नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। एक बहुत मजेदार घटना मैं आपको बताती हूँ, और ये घटना है इसी कविता के बारे में। जब एक बार टीवी पे लाइव सेशन चल रहा था और आप जैसे नन्हे मुन्ने ये कविता पढ़ते हुए देख रहे थे, तो हमारे एक नन्हे दर्शक का सवाल आया था। और पता है ये सवाल क्या था? ये सवाल था कि करवट किसे कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। तो मन ने कहा कि करवट तो करवट होती है, अब इसका क्या अर्थ है। फिर बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा कि जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं, पहले हम चित्त सोते हैं, यानी कि पीठ के बल सोते हैं, फिर आप अपने शरीर को, अपनी पीठ को या तो दाईं तरफ मोड़ते हैं या फिर बाईं तरफ मोड़ते हैं। बस यही दाईं तरफ मोड़ना और बाईं तरफ मोड़ना करवट कहलाता है। लेकिन मैंने एक और बात के लिए कहा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल या तो हम सीधा चलाते हैं, और कभी साइकिल को हम दाईं तरफ मोड़ते हैं और कभी बाईं तरफ मोड़ते हैं, तो साइकिल का दाईं तरफ और बाईं तरफ मोड़ना करवट नहीं कहलाएगा। लेकिन ये खूब मजेदार बात थी कि करवट का मतलब क्या है। तो इसलिए मुझे कविता बेहद पसंद है और उसमें खास तौर से ये वाला हिस्सा कि जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। हम सोच सकते हैं कि ऊंट क्यों थक गया होगा, और आप ही सोचिए कि आप किन किन कामों को करते हुए थक जाते हैं। कहानी सुनते हुए तो आप नहीं थकते होंगे, मुझे भी कहानी कहना और कहानी सुनना बेहद पसंद है। आप बच्चों को भी तो कहानी सुनना बेहद पसंद है, और सोचिए और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने में आप थकान महसूस करते हैं। मैं सोच सकती हूँ खेलने में, आप कहेंगे नहीं, खेलने में तो बहुत मजा आता है, और छुपन छुपाई खेलने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। सब बच्चे अपने गली मोहल्ले के बाकी साथियों के साथ खूब खेल खेलते होंगे। कोई चौपट की सड़क खेलता होगा, तो कोई स्टापू खेलता होगा, कोई बॉल से खेलता होगा, तो कोई गिल्ली डंडा खेलता होगा, और बहुत सारे बच्चे तो कंचे भी खेलते होंगे। तो हमारे सभी के अलग अलग तरह के खेल हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आप और हम कभी भी खेल खेलते हुए नहीं थकते। तो ऐसे कौन से काम होंगे जिन्हें करते करते आप थकान महसूस करते हैं? ये हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, या फिर आप लिखते लिखते थक जाते हो, या फिर आप बर्तन उठाते उठाते थक जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके और हमारे जिसमें हमें थकान महसूस होती है, यानी एक ही तरीके का काम घंटों घंटों घंटों करने में हमें थकान महसूस होती है। लेकिन ये बात तय है, जिस काम में हमें बहुत मजा आता है, जिस काम को करने में हमें बहुत आनंद महसूस होता है, उस काम को घंटों करने में हमें कोई थकान महसूस नहीं होती। अच्छा, इस कविता में एक और बात आई थी कि ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अब कभी जब हम अपने चलने की बात करते हैं, तो हम क्या ये कहते हैं कि हम हिलते डुलते चल रहे हैं? ये बात ऊंट के ऊपर क्यों कही गई होगी? शायद इसलिए क्योंकि ऊंट के ऊपर बहुत सारा सामान लदा पड़ा है, और जब वह रेगिस्तान में चलता है तो रेगिस्तान सड़क की तरह तो नहीं है, सपाट नहीं है, समतल भी नहीं है। कहीं ज्यादा बालू है तो कहीं कम बालू है, कहीं बहुत ज्यादा नरम बालू है तो कहीं थोड़ी सख्त बालू है। तो जब ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो उसके पैर बालू में जाते होंगे, तो कहीं उसका पैर ज्यादा धस जाता होगा तो कहीं कम धसेगा। लेकिन ऊंट रेगिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, वैसे ही जैसे आप और हम सड़क पर चल सकते हैं, कहीं और रास्ते में चल सकते हैं, घर में चल सकते हैं, स्कूल में चल सकते हैं, खेल के मैदान में दौड़ लगा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यह ऊंट भी रेगिस्तान में बहुत मजे से चल लेता है। आप सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे, हम तो ऊंट चला की कविता पढ़ रहे थे और अब हम कहाँ पर आ गए, कामों में उलझ गए। तो बच्चों, दरअसल होता ये है कि जब हम कोई कहानी कोई कविता पढ़ते हैं तो हम उसे अपने अनुभव से जोड़ते हैं। हम जैसे ही कोई कहानी पढ़ते हैं, वैसे हमारे मन में कहानी बुनना शुरू हो जाती है। यही बात कविता पर भी लागू होती है। जब आप ऊंट चला की कविता सुन रहे थे तो आप ऊंट को अपने दिमाग में देख रहे थे, आप ये कल्पना कर रहे थे कि ऊंट कैसे रेगिस्तान में चल रहा होगा। अब ऊंट के बारे में कुछ और बातें इसमें आई हैं। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इतना ऊंचा ऊंट चला में क्या खास बात है? खास बात बिल्कुल है, शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऊंट बहुत ऊंचा होता है। हमारे आसपास या हमने जंगल में, टीवी पर, चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर देखे हैं। कुछ जानवर तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ जानवर बहुत मोटे होते हैं, खूब ऊंचे होते हैं। ऊंट भी उन्हीं जानवरों में से एक ऐसा जानवर है जो बहुत ऊंचा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा होगा ये ऊंट? तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जिराफ की भी तस्वीर उभर रही होगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली तो बहुत छोटी है, लेकिन ऊंट बहुत ऊंचा है। कुत्ते के लिए क्या कहेंगे, कुत्ता भी छोटा सा ही है, उसकी भी उतनी ऊंचाई नहीं है, ऊंचा तो ऊंट है। हाथी और ऊंट में से आप किसे ऊंचा कहेंगे? अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि किस सवाल में फंसा दिया हमने। तो मैं आपको सवाल में नहीं फंसा रही, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, देखिए और तब जाकर ये तय कीजिए कि हाथी ऊंचा है या ऊंट ऊंचा है। कविता में एक और खास बात आई है, शायद आप बच्चों ने बहुत गौर से सुनी हो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट कैसा है? उसकी गर्दन ऊंची है, उसकी पीठ ऊंची है और वह पीठ उठाकर रेगिस्तान में चल रहा है। बच्चों आपने कभी टंग ट्विस्टर का नाम सुना होगा, यानी कि हम किसी शब्द को या एक वाक्य को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिसे हम टंग ट्विस्टर कहते हैं, जिसमें जीभ लड़खड़ाने लगती है। तो इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो झटपट बोलने का मजा देते हैं, और जब हम झटपट बोलने की बात करते हैं तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं और हम जो बोलना चाहते हैं हम वो बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी बच्चे इस कविता के इस हिस्से को झटपट पढ़, तो मैं आपको सुनाऊं कुछ ऊंच, देखिए मुझसे भी नहीं बोला जा रहा तो हम कोशिश करते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। दोबारा से सुनिए, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब आप इस हिस्से को जल्दी से बोलकर बताइए और आपको पता चलेगा कि ऊंट पूंछ ऊंची ऊंट पीठ ये सारे शब्द ऐसे लड़खड़ा गए, सब गडमड गडमड हो गए, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यही मजा है टंग ट्विस्टर का और यही मजा है ऐसे शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का। तो आप इन शब्दों को दोहरा लीजिए, याद रख लीजिए और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के सदस्यों से कहिए कि इस हिस्से को वे जल्दी जल्दी बोलकर बताएं। आपको इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। अब आप इस कविता को कोई नाम भी दे सकते हैं। हमने इस कविता को नाम दिया था ऊंट चला। हमने तो इस कविता को इसलिए नाम दे दिया था क्योंकि इस कविता में ऊंट के चलने की बात थी। आप अपने मन से इस कविता को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप सिर्फ ऊंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं रेगिस्तान का ऊंट, ये भी शीर्षक अच्छा है। आप ऊंट भाई चले, ये भी कह सकते हैं। तो खूब मजेदार शीर्षक आप इस कविता के लिए तय कर सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, हमें आपका तय किया हुआ सब पसंद आएगा। आप बच्चे हैं ही इतने प्यारे, मुझे मालूम है कि आप अपनी कविता का शीर्षक भी बहुत प्यारा सा रखेंगे। आपने कविता में एक और खास हिस्से पर ध्यान दिया होगा, मैं उसे दोहरा देती हूँ आपके लिए। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब इसमें खास बात क्या है? इस कविता के इस अंश में खास बात है इतना ऊंचा ऊंट चला। कविता में कहीं बताया ही नहीं गया कि ऊंट कितना ऊंचा है, लेकिन हाँ उसकी ऊंचाई को बताने के लिए इतना शब्द का इस्तेमाल किया है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा ऊंट होगा। तो मैं कुछ शब्द कहती हूँ, कुछ चीजों के नाम बताती हूँ और आप बताइए कि क्या ऊंट इतना ऊंचा होगा। तो पहला क्या है? ऊंट कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना या बिजली के खंभे जितना? अगर आप इन तीनों में से किसी को भी सही नहीं मान रहे तो फिर आप खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से ऊंट कितना ऊंचा होगा। हमने यहाँ ऊंट के ऊंचे होने की बात की, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी तो हैं जो बहुत मोटे हैं। बिल्ली मोटी है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं उसके सामने कहूँ कि गैंडा मोटा है तो आप कहेंगे हाँ, और अब मैं गैंडे के सामने ये कहूँ कि बिल्ली मोटी है तो आप कहेंगे ना। तो आपकी हाँ और आपकी ना ये निर्भर करती है कि हम किन किन जानवरों की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम जानवरों को अलग अलग देखें तो हमें लगता है कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये दुबला है। हमने तो अकेले अकेले जानवरों के नाम लिए तो हम मोटा पतला दुबला ऊंचा नीचा हम ये तय कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम दो दो जानवरों के नाम ले तब आप ये तय कर पाएंगे कि कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं है? अगर मैं कहूँ की खूब मोटी बिल्ली आई घर में, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि बहुत मोटी सी बिल्ली खिड़की से आई और रसोई घर में कूदी और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चूहा भी आया, ठीक, तो चूहा तो बहुत छोटा सा है। अब चूहा हमारे लिए छोटा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि उस घर में एक चीटा भी आया, तो अब आप कहेंगे चूहा बड़ा है। तो बस यही शब्दों का हेर फेर है, और आप ये तय करने में थोड़ी दिक्कत तो महसूस करते होंगे कि ऊंचा कौन है, मोटा कौन है और छोटा कौन है। तो अभी हमने ऊंट के ऊंचे होने की बात की, अब हम मोटे होने की बात करें। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए हाथी कितना मोटा होगा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना? सब बच्चे सोचेंगे कि माँ के पास संदूक कितना बड़ा होगा, या फिर ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। तो बच्चों को मैंने कहीं फंसा तो नहीं दिया? नहीं, यही तो मजा है शब्दों का। तो हाथी कितना मोटा है, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना, या आप कोई और ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप हाथी के मोटे होने के बारे में बता सके। तो चलिए, हमने बात की ऊंचे होने पर, मोटे होने पर, और अब हम बात करते हैं छोटे होने पर। जैसे ये हमारे बच्चे छोटे मोटे से हैं, वैसे चींटी भी छोटी सी है। तो चींटी कितनी छोटी होगी, सोचिए, चीनी के दाने जितनी? तो आप बच्चे कहेंगे नहीं, इतनी छोटी तो नहीं होती। तो चावल के दाने जितनी? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इलायची के दाने जितनी? तो आप बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो चींटी आपके हिसाब से ना तो चीनी के दाने बराबर जितनी छोटी है, ना चावल के दाने जितनी छोटी है, और ना ही इलायची के दाने जितनी छोटी है। तो आप अपना शब्द खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से चींटी कितनी छोटी है। तो हमने इस कविता के आधार पर ऊंट के बारे में बात की, हाथी के बारे में बात की, और चींटी के बारे में बात की। तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से और बहुत सारे जानवर सोच सकते हैं। जैसे हम अगर पूंछ की बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी पूंछ या तो बहुत छोटी सी है, या बहुत बड़ी है, या फिर बहुत झबरीली है। झबरीली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं और बहुत फूली हुई सी दिखती है, जैसे गिलहरी की पूंछ होती है झबरेली। तो आपने अपने आसपास तरह तरह के जानवर देखे हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत छोटी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत लंबी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ ना तो बहुत छोटी है और ना ही लंबी है। लेकिन आप प्यारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनकी पूंछ हमेशा मुड़ी रहती है। मैं समझ सकती हूँ आप सभी कुत्ते के बारे में बात कर रहे होंगे कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, वह कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तो आपने गाय की पूंछ भी देखी है, भैंस की पूंछ भी देखी है, हाथी की भी पूंछ देखी है। अब हाथी तो इतना मोटा और इसकी पूंछ इतनी छोटी सी। तो और तरह तरह के जानवर कौन से हैं? ऊंट की भी पूंछ होती है, शेर की पूंछ होती है, और बंदर की पूंछ होती है, और लंगूर की पूंछ तो बाप रे बाप कितनी लंबी होती है। वह इतने ऊंचे पेड़ की एक टहनी पर बैठता है और उसकी पूंछ नीचे जमीन को छूती है। तो लंगूर की पूंछ तो बहुत लंबी होती है। तो अब आप ये खेल खेलिए, आप ये प्रश्नोत्तरी कीजिए अपने घर में, और आप एक कागज पर सारे जानवरों के नाम लिख लीजिए, और ये अपने आप तय कर लीजिए कि किसकी पूंछ छोटी है और किसकी पूंछ बड़ी है। और आप फिर एक एक पर्ची खोलते चले जाइए और सबसे पूछते जाइए, अच्छा बताइए कि गधे की पूंछ कैसी होती है, छोटी है या बड़ी है? लंगूर की पूंछ कैसी है, छोटी है या बड़ी है? ये खेल खेलने में आप सभी को बहुत मजा आएगा।

आपने ये कविता सुनी ऊंट चला। कैसी लगी आपको कविता? यकीनन आपको इस कविता को सुनने में बहुत मजा आया होगा। भाई मुझे तो कविता गाने में बहुत मजा आया। तो आज हम यहीं विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।

0: चोट
1: कहां ऊंट ने उब रहा था उछला एकदम ऊंट बड़ा उखड़ा पैर तो उठ ना पाया चोट लगी और चिल गया।

0: उर्मी के उपचार से ऊंट का दर्द मिटा तो लगा ऊंगने। तब उपदेश दिया उर्मी ने,
1: ऊंट का है बस एक उपाय, मिलकर

0: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए सिर्फ सुनो साधना 90.8 FM पर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा बच्चों, आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर 01204060205 पर। वाकई कहानी के जरिए, कविता के माध्यम से और इस शीर्षक ध्वनि शाला के जरिए बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं आपने सीखी होंगी, समझी होंगी, जानी होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे, है ना। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर कि इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है। और इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपने मन की बात हमसे साझा कर सकते हैं। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बड़ा बाजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
6: जी
5: प्लीज कैरी ऑन।
6: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट

0: में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है, और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल, सुगम, आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है। आज आपने जिस विषय को चुना है, जिस टारगेट ऑडियंस को चुना है, वो है यूथ, हमारा युवा। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है। तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टारगेट ऑडियंस को क्यों चुना, और जो सब्जेक्ट है भावनात्मक स्वच्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, अंग्रेजी है इमोशनल हाइजीन। तो ये दो बातें प्लीज आप बताएं।
2: तो जैसे आपने कहा कि भारत देश जो है एक यंग देश माना जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, वो यंग पॉपुलेशन है, 18-35 के एज ग्रुप में है। एंड ये हमें यंगेस्ट कंट्री का खिताब जो मिलता है इस संख्या के द्वारा। तो और देखने को ये भी आ रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाएं, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अगर हम 2024 की बात करें, भारत देश में 171,000 सुसाइड्स हुई
1: जी।
2: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
1: यस जी,
2: मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी
1: जी, जी।
2: बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा कि हंसना, खेलना, और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज़ को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
1: बेशक बेशक, समस्या है तो समाधान है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफर की बात की, सुहाने सफर में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राबता, और ये राबता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का। तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ। और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज़्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं। तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे।
0: जी,
1: तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं,
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद
0: मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ। तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बातें कही उस पर अब आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो कीवर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश, वी ब्रश आवर टीथ, वी टेक अ शावर, राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन, राइट। तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर है। हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना,
0: क्या बात है,
1: और एक ठहराव लाना, वो कहीं हम भूल चुके हैं। और हम भूल चुके हैं, तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए, और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी जिंदगी में। तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ All your impurities which are there in your mind.
0: क्या बात?
1: आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगर अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं, तो आईपैड छोड़ते हैं, तो लैपटॉप छोड़ते हैं, तो मे बी टीवी, तो वो इतना एनग्रॉस है कि कहीं पे एक पॉज लेना भूल गए हैं. तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है वो सभी के पास है, पर वो कहीं ना कहीं
0: अप्लाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. मैम आपकी बात को मैं समझ गया और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, वाकई बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से. और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया, समझ गया, संभल गया, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा, अपने लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा. सो लिसनर्स, कहने का आशय यही कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय. इस विषय को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. सो कहीं जाएगा मत. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है. जब बातों का सिलसिला लगातार ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूज़िक की आवश्यकता होती है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शुरू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ. प्रोग्राम है राबता.

0: जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है, और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राब्ता और राब्ता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं, ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना आप भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें तो वही है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैम मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें। और वाकई आपने सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बारंबार आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैम थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट ही है, वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जो समस्या की हम बात करें, हम सभी उस चीज़ से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है,
0: please,
1: अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है
0: जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है और अगर कहा जो है वो गहरा है तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है,
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट। वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही है, बहुत लाड प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है, नो क्या आई फाइंड सोलेस इन फूड, गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो, उसे बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटने ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप ज़रूर बातें साझा करिएगा जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे ले जरूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपट्टनम के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुरम, हे बाबू हाँ बोल दे तेलुगु।

0: बड़ी दुआओं से, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से आपको, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें, ना किलकारी गूंजे, तो बहुत सूना सूना वो आंगन लगता है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं। बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो कहते हैं कि खुदा की, ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में, उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि

0: देखने चले जाइए, टूर पे चले जाइए। अगर आपको और भी गम है जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया,
1: क्योंकि जैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इकोसिस्टम से जुड़े होने के हम लोग अब एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात कर रहे हैं इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों, जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, कि इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
0: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए आप बहुत बड़ा चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं या आपके पीयर ग्रुप है, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के अगर हम सिम्टम्स देखें, तो जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू टैबू अबाउट, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से हमें फिजिकल हर्ट होते हैं, हमें बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं, और हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से कोई मानसिक तनाव है या कोई मानसिक प्रेशर है तो उसका उपचार भी उपलब्ध है, और ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है।
0: बहुत खूबसूरत मैम, वाकई बहुत एक अच्छा सवाल जो मैम की तरफ से खुद ही आया और उसका बहुत खूबसूरती के साथ मैम ने जवाब दिया। मैं भी थोड़ा होमवर्क कर रहा था, मेरे भी दिमाग में यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी, लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की ज़रूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मेरा मानना यह है कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी जरूर, कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी जरूर। हाँ जी बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने ये भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से, तनाव देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि जो कंसेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें स्ट्रेस में से डिस जो नेगेटिव कॉनोटेशन है उसको हटाना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो कोशिश मैं जो मैं बात कहना चाहूँगी वो कोशिश रहेगी हमारे आसपास से जुड़े लोगों की, मैं भी एक पेरेंट हूँ और आप भी एक पेरेंट हैं, फिर मेरा वही सवाल रहता है कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल ऐसे पेरेंट, और ऐसे नहीं है ये सवाल मैंने अपने बच्चों से नहीं करा, जब मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे कर आते हैं तो पहला सवाल मेरे उनसे होता है हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका पेपर कैसे रहा। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया शायद हम उसको भूल जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ छोटी, बहुत छोटी चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट एज गार्जियन इफ़ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ, कि सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे, तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है। तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको, उनकी बात को सुनें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहते हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी, तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें। तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड, हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से, प्रेशर से गुजर रहा है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी। आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
0: जी,
1: था
0: जी,
1: चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना। तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी. और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पाठ है वो सुनाया गया, और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है, और वो किया गया. और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है. तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे, और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था. तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे
0: जी.
1: तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें. उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा. दूसरी चीज़, आप आई विल कम टू, आई विल जस्ट टेक टू मोर मिनट्स टू वाइंड अप. जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे, दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 मिनट्स नूडल, 30 सेकेंड्स ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स,
0: सब कुछ
1: तुरंत अभी है. तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी. और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है. तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था. और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे हमारे यहाँ जलेबी होती है या बर्फ़ी होती है, उस तरह की मिठाई है अमेरिका में, तो उन्होंने उन बच्चों को वो मिठाई उनके सामने रखी और इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ा कि आप अगर ये मिठाई 15 मिनट तक नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको एक मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी. तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो. तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है. और फिर जिन बच्चों ने वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है हमारे एकेडमिक्स में, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर 15 साल बाद फिर स्टडी की गई
0: जी.
1: जो बच्चे 5 वर्ष के थे वो अब 20 वर्ष के हो गए. और उनका जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम सेट स्कोर के नाम से होता है, तो उनके सेट स्कोर उन बच्चों के एग्जामिन किए गए. तो जिन बच्चों ने उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा था, उस मिठाई को नहीं खाया था, उनके स्कोर काफ़ी बेहतर थे उन बच्चों के कंपेरिजन में जो मिठाई को रेजिस्ट नहीं कर पाए थे और तुरंत दे गिव इन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस. तो क्या इसे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशंस एंड टू डीक्लटर आवर थॉट्स. संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय. राइट, दैट इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. अस्तो मा सद्गम्य, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स. तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से. कोई ना कोई हमें मिलेगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे.
0: जी
1: तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को दूर रखकर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा कुछ दो चार बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते. तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो दो मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आग बंद करके बैठें, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था. क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं. और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं. बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी. अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं.
0: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूँ. और बस लिसनर्स हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए. और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए. अदरवाइज कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आस पास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं. तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
0: बेशक अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम राब्ता. कैसा लगा जरूर हमसे राब्ता करेगा 01204060205 पर. फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Chori chori dekhe jaye bhi.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुषा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग
1: और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8। सुनो
1: शारदा भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। गच लागे म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सफाई ही आधा ईमान है,
2: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
1: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
2: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते।
1: खाना बनाने से पहले,
2: खाना खाने से पहले,
1: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
2: शौचालय के प्रयोग के बाद,
1: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
2: बाहर से आने के बाद,
1: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
2: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं, और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
2: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
1: जनहित में।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों
0: और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग

0: के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM.
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
0: जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रूहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नवी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।

0: चाहती हूँ?
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेंपल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment.

0: designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
3: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहाँ की अमर रह गई और वो है इनकी।
4: ये तो तुम जैसा।
5: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
4: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
5: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना? अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Filmmaking एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन लिम्फ नोड से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहाँ से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों पर सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पर हम डीजल और कैरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
2: एफएम। हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओह मुझे बुखार हो गया है। पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ,

0: किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
1: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
0: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नाम तो सुना ही होगा।
0: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
0: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
3: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ट्वेंटी 2018 में यहाँ पे JEE के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
2: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पर मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पर हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
1: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
3: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
4: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
1: कोविड में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकें, JEE रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकें टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाईकर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
2: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये
1: एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
3: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.